भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दीन दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, पग जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो है पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगट।

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकारे हो कश ना दृटेता पाप उन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसै व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डर। आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण कौ कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शर शिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार नानक करते का नहि सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप पुरत हर तब सगन अब सगन कहां विचार है। जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाला शेदा भेद समाया।

एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप आपतियारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कहो आपै पहुचा, जह आप रचे ऊपर पंच आकार तेहो गुण मैं कीनो बिस्तार, पाप पुन तै पई कहावत कहो नरक कहो सुर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल हों मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान, आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अब

गाँव अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमुद दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ता की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविद करो विचार, पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार। दाता भुगता देनहार, तिस बिन रहन ना जाए। दाता भुगता देनहार, तिस बिन अवर ना जाए। जो चाहे सोई मिले, नानक हर गुण गाए। गोविंद जस गाइए हर नीत, मिल भजिए।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मंतन बसै तज काम क्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत कौ तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पए जिनमन वसिया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहौ करत विहाय, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनके उपाय। आद ब्याद उपाद रस कबो न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महा नरक मैं वास, कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान, चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी। चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार, सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए नानक साध रवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच, कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै नह बूझिए नह कछ करत विचार, स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक, रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच, नानक बिरले पाई जो नारचै परपंच। सलोक खट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार, भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार पौड़ी। खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथय अनेक, उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद, रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसियो पाई शरण दयाल, चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तोटा हिराए सासंग लिव लाए, खाट खजाना गुण धारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथै बोले सत सुभाए, नानक मन संतोखी है एक सिस्यों लिव लाए पौड़ी। सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारण है हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाइए तजिए अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच्च बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे

मोहयो स्वाद बेकार, नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे शदर अपवीत, हर नाम न जपै करत विपरीत। पारतरे रमै बकै साध निंद, करन सुनही हर जस बिंद। हिरै पर दर्ब उदर कै ताई, अग्न निवरै तृष्णा ना बुझाई। हर सेवा बिन एह फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो, जत देखौं तत सोए। मन बस आवै नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संतोख नाम जप लीने। करनी सुनिए जस गोपाल, नैनी पेखत साध दयाल। रसना गुण गावै बेअंत, मन मै चितवै पूर्ण भगवंत। हस्त चरण संत टहल कमाई, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद। गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब बिस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया। तावत मन राखै कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए। सब मैं पूर्ण रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल। नानक प्रभ सो मिल रहे, बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान। हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग। कोमल बाणी सब को संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है। गुर पूरे ते एह निहचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम। पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौद सी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो। हर सो का दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ। दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो। हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम। नानक ऊना देखिए, पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप। दसे दिशा रव्या प्रभ एक, धरने आकाश सब मैं प्रपेख। जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल। सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद। संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावसे आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव। मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव। टूटे

किया। सब जन को आए करै रह रास, गुरपुरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेवा तुल सुख पाया। गुरपुरे दान दिया हर निचल, नित बक्से चढ़े सुवाया। कोई निंदक वड्याई देख ना सकै, सो करता आप चाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगता नो सदा रखदा आया। पौड़ी तू साहेब अगम दयाल है, वड़दाता दाना, तो जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई। तू है सुगड़ में रह मन पाना, मोह कुटुंब दिस आमदा, सब चल नहारा आवन जाना। जो बिन सच्चे होरत चित लाए दे, से कूड़ियार कूड़ा तिन माना। नानक साहित आए तू, बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। सलोक महला चौथा। अगों दे सत भाव ना दिचै, पिछों दे आख्या काम न आवै। आद विच फिरै मनमुख विचारा, गली क्यों सुख पावै। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै। ता अप्यो पीवै शब्द गुर केरा, सब काड़ा अंदेसा भ्रम चुकावै। सदा आनंद रह दिन राती, जन नानक अंदर हर गुण गावै। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिखिया खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवै। उद्यम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरन आवै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदिया उठदिया हर नाम ते आवै। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। पौड़ी जो तुद सच ध्याए दे, से विरले थोड़े। जो मन चित एक आराधते, तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। तुदनों सब ध्याए दी, से थाए पए जो साहेब लोड़े। जो बिन सतगुर से वे खांदे पैन दे, से मोए मर जमे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कड्डै मुख कोले, मन खोटे दईए विछोड़े। सलोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला, खेदो लड़ा तिन वे मुख, वे मुखै नूं पाया। पासना देई कोई बहन जगत मैं।

मंत्र बताय हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पा

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारिया नू।

चढ़ के घोड़ड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा सेती च त्यो लासे कुकड़ दी ओडारी पौड़ी रसना उचर हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुंतन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए उधारियानो दयो सेव अमिता श्लोक महला पंजवा तंदड़े कोलाहा चेतना आवे हिकड़ो नानक से ही तन फुटानो जिन्ना साई विसराय महला पंजवा परे तोन की तोन देवता तिन करण हारे सबे सिख उबारियानो प्रभ का इसवारे निंदक पकड़ पछाड़ियान झूठे दरबारे नानका प्रभ वड्डा है आप सा सवारे पौड़ी प्रभ बेअंत किश्यंत नाहे सब तिसह करना अगमा गोचर साहेबो जिया का परना हस्त दे प्रतपालदा भरण पोखण करना मेहरवान बख्शेंद आप जब सच्चे तरना ज्योत पावै सो पला नानक दास सरना श्लोक महला पंजवा तिन्ना भुख ना का रही जिसदा प्रभ है सोए नानक चरणी लग्या उदरै सबो कोए महला पंजवा जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसै भुख ना मूल पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती घोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े ढाडी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक मन तन चाओ एहो नित प्रभ कौ लोड़े सुध कीचे राग गौड़ी भगता की बाणी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद गौड़ी गुआरे री श्री कबीर जियो के चौपदे चौदह अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारण कारण बन जाइय सो जल बिन भगवंत ना पाई जे पावक सुर न रह जारे राम उदक जन जल तो बारे भव सागर सुख सागर माही पीव रहे जल निखुटत नाही कह कबीर पाए सारंग पानी राम उदक मेरी तिखा बुजानी गौड़ी कबीर जी मादा ओ जल की प्यास ना जाए जल मैं अगन उठी अदकाए रहाओ तू जल निद हौ जल का मीन जल मैं रहो जलै बिनखीन तू पिंजर हौ सुअटा तोर जमन जार कहा करे मोर तू तरवर हौ पंखी आहे मंद पागी तेरो दर्शन नाहे तू सतगुरु हा नौ तन चेला कह कबीर मिले अंत की बेला गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ। हम अपते अपनी पत खोई हमरे खोज परो मत कोई रहाओ हम मंदे मंदे मन माही सांझ पात काहू स्यो नाही पत या पत ताकि नहीं लाज तब जानोगे जब उगरे गोपाज कहो कबीर पत हर परवान सर्ब त्याग भज केवल राम गौड़ी कबीर जी नगर फिरत जाओ पाई है जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मुंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेड़ ना गई आकाई बिंद राख जाओ तरिये पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी संध्या प्रात इशनान कराही ज्यो पै दादर पानी माही जाओ पै राम राम रत नाही ते सब धर्म राय कह जाही रहाओ
काया रत बहु रूप रचाही तनकौ दया सुपना पी नाही चार चरण कह बवागर साधु सुख पावे कल सागर कहो कबीर बहु काय करीजै सर्बस छोड़ महा।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म की।

भेखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट भई खेड लेले को चूंगै नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पद ज्यों जर छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत भई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर्य चंद करे उजियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आपते बांधया, मोह कै फाद काल सर संध्या रहाओ, कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार लगा।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाबक माराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पाव के आपे पवना, जारै खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरै कहे हुए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगते

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निज पत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भए राजा राम सहाई, जन मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पंच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ रीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जानै, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तनै ना होई। गौड़ी झगड़ा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सो काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सो मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास।

दुचिते की दोए थून गिरानी मोह बलेंडा टूटा तिसना शान परी तारी उपर दुरमत पांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरख तह तेरा जन पीना कह कबीर मन पया प्रगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुने ना हर गुण गावै बात नहीं असमान गिरावै ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगते बाहजो तिनते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरू पर पानी तह निंदे जे गंगा यानी बैठत उठत कुटलता चाल आप गए और नहूं कहल शाड़कु चर्चा यान न जाने ब्रह्मा हूं को कयो न माने आप गए और नहू खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे अवर्ण हस्त आप है काने तिनको देख कबीर ले जाने राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवत पितर ना मान।

कौन लाज वहारी, लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, तां सोहागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफिर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखिया क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बहु फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़ाम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद मान कलही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पाद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़नहार उसका अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै, जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने, ओ तो उसका अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा सुन गुफा मैं आसन बैसन। कल्प बिबरजित पंथा मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है, जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही, अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोलन लागी। कहो कबीर तां को पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इकीस, पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो, कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये, पाचन सिर अढ़ाई। जो कर पाचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस, एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया, चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै, नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी, कहो कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया, मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है, के ओहो जोग के भोग। दोह मिल कारज उपजै, राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है, एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यो कासी उपदेश होए, मान समर्ति बार। कोई गावै को सुनै, हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसार नहीं, अंत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे, भव सागर नहीं तारे। ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम, अहम बुद्ध मन जारे। ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर, सो क्यों मनो बिसारे। ओरे हीरा लाल अमूल जन्म है, कौडी बदले हारे। ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी, हृदय नाहि बिचारे। ओरे उन्मत मान हिरयो मन माही, गुर का शब्द ना धारे। ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लैत बेकारे। ओरे कर्म भाग संतन संगाने, काष्ट लो उधारे। ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हारे। ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भक्त निस्तारे। ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी, मन बौरा रे। चलत रचियो जगदीश, काम सो आए गज बस परे। मन बौरा रे अंक सहयो शीस, बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे। निरपय होए ना हर भये, मन बौरा रे। गहयो ना राम जहाज रहाओ, मरकट मुष्टि अनाज की। मन बौरा रे लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परया। मन बौरा रे नाचियो कर कर बार, जो नली सुवटा गहयो। मन बौरा रे माया यो व्यवहार, जैसा रंक सुंभ का। मन बौरा रे
ਤਿਉਂ ਪਸਰਿਓ ਉਪਾਸਾਰ ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ।

तस कर नेर न आवै। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही ना जावै। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धर, एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लही है रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक, खोजत पए उदासी। मन मुकांजे बा नारायण, परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन धावत, परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कपके कर मुष्ट चनन की, लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिन, कही ना सच रहयो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत, कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन मैं, फिर काल हयो। या तन जोबने अरसुत दारा, पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिनको मंदर, चौदे ठाठ ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो, मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिर मैं बिनस जाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावै ता हुक्म नावै, इस बेड़े को पार लंगावै। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारिंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछिए, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने ना की जयास। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान रहाओ। क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान। जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए। जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जिह कट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, तै सोयो संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और रहाओ। और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए। जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवै बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चित आ, राम सिमर बैराग।
ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ ਲੋਚਨ ਪਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੀ ਜੈ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ ਉਹ ਆਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਟ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀ ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇਵਾ।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखरंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है एक, देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौकर दे

माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुण गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखे रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसलख है ना कोई, अल्लाह लहो तो क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रह, ता होए न खियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमस सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, ताँ काट माहे काट जो पावा, सो कट शाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एहे, चचा रचित चित्र है पारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छाक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जार पार जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगरो ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेराओ पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कते ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंट ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिर सब लोग ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे को व्यवहार ज्ञानवंत को तत् विचार। जाँ कह जी जैसी बुध होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पेओ आपे करता आपे देओ। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आदि पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म में सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

थावर थिर कर राखे सोए, जोत दी वट्टी कट मैं जोए, बाहर पीतर पया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट मैं दूजी आन, तौ लो महल न लाभे जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कह कबीर तब निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देवा पाहन तारी अले, राम कहत जन का स्ना तरे रहाओ, तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले, चरण बद्धक जन तेऊ मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे, दासी सोत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन कौ।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै परम फास, प्रेम

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सो दर तेरा कहा सो कर कहा जित पै सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावण हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावण हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहब साचा नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे काट ना जाए।

पे नजर करे, जो किश करना सो कर रहा है, अवर ना करना जाई, जैसा वरतै तैसो कही है, सब तेरी वड़ियाई। कल कल वाली माया मन मीठा, मन मत वाला पीवत रह, आपे रूप करे बो भांति, नानक बपड़ा एव कह। आसा महला पहला, वाजा मत पखावज पाओ, होए अनंत सदा मन चाओ, एहा भगते हो तपताओ, ए तरंग नाचाओ रख रख पाओ। पूरे ताल जाने साला, होर नचना खुशिया मनमा रहाओ, सत संतोख वजै दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, रागनाथ नहीं दूजा पाओ, ए तरंग नाचाओ रख रख पाओ। भौ फेरी होवे मन चीत, बहंद्या उठद्या नीता नीट, लेटन लेट जाने तन स्वाहो, इतरंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखण वेरा वेर, इतरंग नाचो रख रख पैर। आसा महला पहला, पौन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंध किया, अंदले दहसर मूड कटाया, रावण मार क्या वड्डा पया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्बे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा पया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्न उपाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वखियान जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्ब ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीणा शब्द वजावे जोगी, दर्शन रूप अपारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवे याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजे, जन्म जन्म किश ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहल कीचे अरदास, पाप पुंद साखी पास, जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे पे ही को पावे, तुझे आपे पावे तवे चलावे। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शह भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई,
ਜਿਤ ਕਾਰਜ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾ ਕਾ ਭਰੇ ਕੋ ਸੋਏ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਹ ਬਨ ਸੰਸਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਦੁਰਮਤ ਗਤ ਪੈ ਕੀਰਤ ਠਾਏ ਸਚ ਪੌੜੀ ਸਾਚੋ ਮੁਖ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਾਇ ਰਹੀ ਥਾਉ ਮਨ ਚੂਰੇ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਸਰਬ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਰਹਾਉ ਅਧਿਕ ਤਿਆਸ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕਰੈ ਦੁਖ ਵਿਖਿਆ ਸੁਖ ਤਨ ਪਰ ਹਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਤਰ ਧਨ ਹਿਰੈ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਖਾ ਸੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪੇ ਕਰੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਪੈ ਆਗੈ ਜਿੰਦ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਦੇਹੇ ਭੇਖ ਵਰਨ ਦਿਸੈ ਸਭ ਖੇਹੇ ਜੋ ਪਜੈ ਸੋ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕੇ ਅਸਰ ਨਾਮ ਰਜਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕੋ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਚੁਗੈ ਹੰਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸੈ ਅੰਸ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬਿਨ ਜਲ ਸਰਵਰ ਕਮਲਾਂ ਦਿਸੈ ਰਹਾਉ ਬਿਰਲਾ ਬੂਜੈ ਪਾਵੈ ਭੇਦ ਸਾਖਾ ਤੀਨ ਕਹਿ ਨਿਤ ਬੇਦ ਨਾਦ ਬਿੰਦ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਪਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ

हाजरे अरदास दुख सुख साज करते प्रपास रहाओ कूड़ कमावे आवे जावे कहन कथन वारा नहीं आवे क्या देखा सूझ बूझ ना पावे बिन नावे मन तृप्त न आवे जो जन्मे से रोग व्यापे हमे माया दुख संतापे से जन बांचे जो प्रभ राखे सतगुर सेव अमृत रस चाखे चल तो मन राखे अमृत चाखे सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे साचे शब्द मुक्त गत पाए नानक विचों आप गवाए आसा महला पहला जो तिन किया सो सच थिया अमृत नाम सतगुर दिया हिरदय नाम नाही मन भंग अंध नाल प्यारे संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिउं राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्शे पूछना होए दूजा मेटै एको सोए आसा महला पहला एक आवै एक जावै आई एक हर राते रह समाई एक धरन गगन में ठावर ना पावै से कर्महीन हर नाम ना त्यावै गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत भौ जल गुर सबदी हर पार लंघाई रहाओ जिन कौ आप लय प्रमेल तिन कौ काल न साकै पेल गुरमुख निर्मल रहै प्यारे ज्यो जल अंब उपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनो कहियै दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहियै अकथ कथौ गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार शास्त वेद सिमरत बहु भेद अठ सठ मजन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागै नानक हिरदै नाम वड्डे तुर भागै आसा महला पहला निम्न उपाय लगो गुरे अपने आत्म राम ने हारिया करत विचार हिरदै हर रविया हिरदै देख विचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभै मिटै ज्ञान होए उजियारा रहाओ रवनी रवै बंधन नहीं टूटै विच हम मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हम मैं टूटै ता को लिखै पाई हर हर नाम भगत प्रिया प्रीतम सुख सागर ओर धारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यों जूझ मरै प्रपाए मनसा मनै समाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज पाए लिवलाए आसा महला पहला किसको कह सुनावै किसको किस समझावै समझ रहे किसे पढ़ावै पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पज मेरे मनो गहर गंभीरा रहाओ अनंत तरंग भगत हर रंगा अंधन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई पीखक पीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टायो सारे तरे त्यान। तुते

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहार ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन हो।

काया ब्रह्मा अमन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुछ पाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजया चार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभी नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भाग, पाहरू राशब चोर ना लागे, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचा दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने साबास, सच्चे तख्त

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर विडाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्से जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, फिर स्यो मिलना ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम सामीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवि रहना, दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदे, मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ, सच नाम जा नवनिद पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या।

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जागै हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जागै हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हाँ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवै पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पाव कितने किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो नाह जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लस्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख मान जा पत लेख ना पवे ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाई है भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटी है लख संजी है खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजिया ले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर शेवा महला पहला। मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगा।

मधुसूदन कर मुंदरी पहरै परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंधावे कामण श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब से जय आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिया भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद भावै नानक ता को मिलै वडाई साचे नाम समावै रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहुड़ हुकम ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सकै कोई जे को दरगै बहुता बोलै नौ पवै बाजारी सतरंज बाजी पक्कै नाही कच्ची आवै सारी ना को पढ़िया पंडित बीना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिऐ बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मनै मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करै पला कर मानो।

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्पते आगी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रह रास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यों चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसे पियाए जा को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, कैमद शूशै पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ करै किया, सिफती रता सद बैरागी, जुवे जन्म न हारै, कहो नानक सुन पार्थर योगी, खीवा अमृत धारै, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपै दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोस न होई रहा हो, सकता सीहो मारे पैवगे, खसमै सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ताक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चै बैराग, खर दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए, साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कौ गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सांस शरीर, गुरमुख ता कौ लगे ना पीर, जम काल तिस नेड़ ना आवै, नान गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुवा विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तलना तुमाए, निरपव दाता सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए, गुण संग्रहो विचों अवगुण जाहे, पूरे गुर कै शब्द समाहे रहाओ, गुणा का गाहक होवै सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे, साची बाणी सूचा होए, गुण ते नाम प्राप्त होए, गुणया मोलक पाए ना जाहे, मन निर्मल साचा शब्द समाहे, सेवट भागी जिन नाम ते आया, सदा गुण दाता मन वसाया, जो गुण संग्रह तिन बलहारै जाओ, दर साचै साचे गुण गाओ, आपे देवै सह सुभाए, नानक कीमत कहन न जाए, आसा महला तीजा, सतगुर विच वड्डी वड्याई, चिरी विछुने मेल मिलाई, आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए,

विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा। मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख सांस शरीर, शब्द तरे जन सहज सुभाए, तिनके हम सद लागे पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुखला था, ते हर दरगह मिले सुभाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ा आपे दूर, आखने आखे बके सब कोए, आपे बख्श में लाए सोए, कहना कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, आत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा महला तीजा। दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी होए, दूजे पाए ना लागे कोए, मूल लागे से जन प्रवाण, आंदन राम नाम जप हिरदय, गुर शब्द हर एक को जान रहाओ। डाली लागे नेफल जाए, अंधी कमी अंध सजाए, मनमुख अंदर ठौर ना पाए, बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माहे पचाए, गुर की सेवा सदा सुख पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरे कुल उदरनहार, गुर की बाणी नाम वजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल शब्द दुरत गवाया, आसा महला तीजा। मनमुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने परमै विच सूता, मर मोया सबदे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझाण आई, इस जुग में लाहा हर जप लै जाए रहाओ। नाम विहुण गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहुणी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर ना पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हों मैं मारे सदा उदासा, आसा महला तीजा। लालै अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर सरनाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरै, सोग हरख दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरै रहाओ। करनी कार तुरो फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्तन नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मनमुख परम भुलै संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वखर पलै ना पाए, मनमुख भुला जन्म गवाए, सतगुर सेवे सो लाला होए, उत्तम जाति उत्तम सोए, गुर पौड़ी शब्द ऊंचा होए, नानक नाम वडाई होए, आसा महला तीजा। मनमुख झूठो झूठ कमावे, खसमे का महल कदे ना पावे, दूजे लगी परम भुलावे, ममता बांदा आवे जावे,
ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖ ਸਿੰਗਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤ ਧਨ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ ਝੂਠ ਮੋਹ ਪਾਖੰਡ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਓ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੈ ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਅੰਦਨ ਹਰ ਰਾਵੈ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਚੀ ਜੇ ਸੱਚ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਰਾਖੈ ਸਦਾ ਉਰਧਾਰ ਨੇੜੇ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਆਗੈ ਜਾਤ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਏ ਸਬਦੇ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਭਗਤ ਰਤਾ ਜਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਪੈਸਾ ਚੈ ਸਾਚ ਸਮਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਮਨ ਮੁਖਰੂਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਰਹਾਓ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਏ ਸਦਾ ਸੂਚੇ ਸਾਜ ਸਮਾਏ।

गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार, आसा महला तीजा गुर सायर।

कराए। ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत

मनुआ अस्थर बैल मन जो वो हर सिंचो गुरमत जेहत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सकौ जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तो ने उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाप पसार कब को हाथ फसार हाथ पाप पसार तो बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमार। कब को लोगन कौ पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा महला चौथा सतसंगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन अज्ञाना दे राजाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छाओ सोई फल पावो फिर भूख न लग आए। आपे हरे परंपर करता हरे आपे बोल बुलाए सही संत भले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवा राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा। आया मरण तो राहो हों मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ। पूर्व लिखे डेहे से आए माया चलन अज के कल तुरों फुरमाया बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया जुए खेलन जग के हो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया दर सच्चे सच्यार महल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है अंदन नाम ते आए हर गुण गाई है। अंतर वसजा नेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है। नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन परगास सच्चा पाई है। राग आसावरी कर सोलवें के दो महला चौथा सुधंग। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं सतगुर मोको हर नाम बताया हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकौं रहाओ। हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन हाँ हर बिन रह ना सकौं हाँ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई
हाँ हर बिन खिन पल रह ना सको, जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बैराग बिरक्त पायो, हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राग सरन जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गोसाई, जन नानक कै मन अंद होत है, हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख बिमोहत होए, साधक सिद्ध सुरदे मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ। एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गृही तिन होए ना आपे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुर पावे। तप करते तपसी पूलाए, पंडित मोहे लोभ सवाए, त्रैगुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे कर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास, जो तू कह है सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा, ससू ते

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवां, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह सोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ। तिचर कंतबो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप। इच पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रेहो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवां, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक घर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक पय अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीये मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभु तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तेरे सेवको किसकी कान, सगत पूला फरै बेबान। तेरी वड्याई कही ना जाए, जय कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवां, परदेश चाग सब देखो आया। वस्त अनूप सुनी लावाया, गुण रास बन पल्लै यानी। देख रतनियो मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास। अमोल रतन अमोला रास, विष्ट सोभाई पाया मीत। सौदा मिलिया निश्चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौन ना पानी। सहज विहाजी सहज लै जानी, सत कै खटिया दुख नहीं पाया। सही सलामत कर लै आया, मिलिया लाहा पै आनंद। तन सा पूरे बख्शिंद, एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया। सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। न देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ
सुहाग हमारो अब हुण सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया भरण सोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो प्रै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिरै हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख बामण

मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसबदी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुरसीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पे।

हर हर राय। नाम तेरा जप जीवै नानक, ओत पोत मेरा संग सहाय। आसा महला पंजवा, अरड़ावै बिललावै निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया। अपना कीता पावै निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवै नाले लय सदावै। अनहोंदा अजगर भार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारे जे होए बतीतै, सो नानक आख सुनावै। भगत जना कौ उसदा आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभमान, सोहने स्वरूप सुजान बिचखनो, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाक साल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

जागे। कहो नानक गुण गाइए नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत। आसा महला पंजवा, नवनिध तेरा सगल निदान, इच्छा पूरक रखे निदान। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन वस्या लगे न दुखा रहाओ। जो तू करे सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावे ता हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूपया रंगा। करै ना चुरै ना मन रोमन हारा, अवनासी अवगात्या गोचर। सदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे दास

वे मो ताजा वे प्रवाहो नानक दास कहो गुरवाहो आसा महला पंजवा हर रोड़ होशै रस माता घर मैं वस्त बाहर उठ जाता सुनी ना जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहेब का से बिरानी ऐसे गुनै शा दियो प्राणी तेस्यो लूक जो सद ही संगी कामना आवै सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहां उहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल स्यो लागो मान सतगुर तूठे कीनो दान नानक कौ गुर दीख्या दीन प्रभ अबनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बिनोद भरे पुरधारिया अपना कार्ज आप सवारिया पूर समगरी पूरे ठाकर की भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ नाम निधान।

हर आज मिलक जोबन ग्रह शोभा, रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगह काम न आवे छोड़ चला अभिमानी, काहे एक बिना चित लाई है, उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला, चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता सियाण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया, जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया, आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवै पराई, अपना कीता पावै, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच ना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पै करे पुकारा, निंदक की गत कत हू नाही, खसम एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई, आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए, गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने, उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रख, मन में एक अंकारे, तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ, प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै, कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै, मंतन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावै, जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे,
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇ ਹਰ ਕੂਕਰ ਤਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ।

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एत्यो तुझे ते आओ, नानक के प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकरो, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठारथियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काई तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आग्या ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकड़ गुर काढ़ लिए। निरपौ पहे सगल पौ मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनों कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को भख है। ओहो सुख ओहा वड़ियाई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंगमाणी। तुदया गै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई, कोई ना न जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सा संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हराओ रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ता कै संग तरओ रे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट भया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया। गुर प्रसाद पहे जनमूते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने पाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद कुर्बान।

करो संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समर्थ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभु नजर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभु आप सिंगार सवारन हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइय पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन माया।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाइए, यो अस्थान गुरु ते पाइए, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा, हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै, सो नाम जपै जो जन तुद पावै, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवान, सास सब जा का

अरादा किशु ना जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी आसा महला पंजवां हर हर।

हर माला वर्यंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहे,

प्रभ की प्रीत सदशोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, पूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच दुगरिया

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सभी ऊपर झूलै, ता का धूप सदा पर फुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गे राम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवां पंच पदा, जे पेंड लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवां दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवां महला पंजवां। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवां, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग,

तेरे की तपत हरी पलो पयो प्रे कहया मानिया सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगमे अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बहां पक।

संत त्रिपतासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुरपूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोख सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे पाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगर चुकाया पंच दूत सब वसगत आया जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भौ ना जावे सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिय रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली भांत सब सहे समाही जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभु के सेवक दुख ना चूर्ण ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गई है दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बिनासे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी।

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत बिगास। जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहेब कै मन भावै। वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया, पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवा, गुर पूरे राख्या दे हाथ। प्रगट भया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई। जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर कौ कुरबान। आसा घर अठवां।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आद जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवै अंध घणा मन तन जापणे। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैण पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेव संसार

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहू नड़िया से मरण में सूर विसूर। दास दा सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वडियाई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वणजारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हों चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिये रहाओ। वे प्रवाहो आनंद में नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कहे सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारी है एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिशायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जौ मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए बिश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभ पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी ना

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एह मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझा डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोए शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागै नाही मोहकम फौजा ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहुगुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सा संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल सियान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंगी है सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जनते आवे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत। सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म
गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई, जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकरो, पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय।

तुम्बंती रिज को ना कर रहाओ। सिमृत शास्त्र बहु कर्म कमाए, प्रभु तुमरे दर्श बिन सुख नाही। वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध सरण प्रभ संग वसै। आसा महला पंजवां कर पंद्रवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिकार माया माद सोयो, सूई बूझ ना आवै। पगर केस जम उठारियो, तद ही कर जावै। लोभ बिखिया बिखै लागे, हिर वित चित दुखाही। खिन भंगना कै मान माते, असर जाणै नाही। रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारै, सुनै नाही डोरा। निपट बाजी हार मुका, पछतायो मन पोरा। दान सगल गैर वजह भरिया, दीवान लेखै ना परिया। जेहे कार्ज रहै ओला, सोए काम ना करिया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीर्त गाया। मान तान तज सियानप, शरण नानक आया। आसा महला पंजवां, बापार गोविंद नाए। साध संत मनाए, प्रे पाए गुण गाए। पंच नाथ तूर बजाए, रहाओ। कृपा पाए सहजाए दरसाए, अब रातिया गोविंद स्यों। संत सेव प्रीत नाथ, रंग लालन लाए। गुर ज्ञान मंदर लाए, रहसाए नहीं आए। सहजाए मन निदान पाए, सब तजी मने की काम करा। चिर चिर चिर चिर भया, मन बहुत प्यास लागी। हर दर्शनों दिखावो, मोहे तुम बतावो। नानक दीन शरण आए गल लाए। आसा महला पंजवां, को बिखम गार तोरै। आस प्यास तोह मोह, परम ही ते हो रै। रहाओ काम क्रोध लोभ मान, एह ब्या दिशोरै। संत संग नाम रंग, गुण गोविंद गावो। अन दिनो प्रभ त्यावो, परम पीत जीत मिटावो। निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम। हर भजन सफल काम, रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया। जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म। हर चरण सिमर जाग, कर भगत नानक पूर्ण भाग। आसा महला पंजवां, हरख सोग बैराग आनंदी। खेलरी दिखायो रहाओ, खिनहू पै निरपै खिनहू। खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू। खिनहू तजायो, खिनहू जोग ता बौ पूजा। खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग। नानक हर रंग लायो, राग आसा महला पंजवां। कर सतारवां आसावरी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां। गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां। ऐसे लालन पायो री सखी, रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां। गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरण पै री सखी, थिर थिर चित थिर हां। बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां। बाहर अनेक तर हां, राजन योग कर हां। कहो नानक लोग या लोगी री सखी, आसावरी महला पंजवां। मनसा एक मान हां, गुर स्यो नेत ध्यान हां। दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां। तौ मिलिया गुर कृपान मेरे।

तो चूकी सगल कान लैनो जिसम थान हां पै पावक पार प्राण हां निज कर तिस थान हां हर रस रसै मान हां लाथी तिस पुखान हां नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनी हां जपिया सह तुनी हां साधु रसन पनी हां शूटन बिद सुनी हां पाइय वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनि हां सर्व का प्रभ धनी हां दुर्लभ कल दुनी हां दुख बिनासनी हां प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेवी है हां अलख अपेवी है हां ता स्यों प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जान हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निदान लहो हां सुख समाइये मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ता को सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगता शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां निमख ना विसरै हां तिस बिन क्यों सरै हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर ना सुजै मूह हां करै सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिया हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतर्गत बुझे हां सबके सब के शिव तिस सुझे हां पत तो उधार ले हो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यो पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन मैं मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कारथ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
उत्तर आप घट सरवरण आवै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार या सब ठावरे रहाओ सच व्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द करो जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरमर मैलन धोवै जै स्यों राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हिव शीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत पूज चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थान मुरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रस रसिया मते कै पाए तख्त निवासी पंच समाए कार कमाई खसमर जाए अवगत नाथ ना लिखिया जाए जल मैं उपजै जल ते दूर जल मैं ज्योतरिया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर नित गुण गावा देखा दूर अंतर बाहर अवरना को ज्योतिष पावे सोफन होए सुन पार्थर नानक कह विचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब जतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूजे को थाए ना पाई नाम बिहुने माथे शाई साज धनी जग आए बिनासा छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ जग मोहे बांधा बहुती आसा गुरमति एक पय उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रे जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सदगुर सेवे करनी सारी बारह मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए माया मोह गुरसब जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए तावत रखै ठाकर हाए सिख संगत कर मिलाए गुरबिन पूलो आवै जाए नदर करे संजोग मिलाए रूड़ो कहो ना कहया जाई या कथ कथो ने कीमत पाई सब दुख तेरे सुखर जाई सब दुख मेटे साचे नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला त्रिपवन सूजे आप गवावै बाणी बुझे सच समावै शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मान्या ऐसा सुरत वखान कथनी बदनी पड़ पड़ पार लेखा संखा लेखा पार ऐसा साचा तू एको जान जमन मरना हुक्म पछाण रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल बंदा छूटे नाम समाल गुर सुखदाता अवर ना पाल हालत पालत निभी तुद नाल शब्द मरै ता एक लिवलाए अचर चरै ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन नाम साए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी थापो थाप सर्व निरंतर आपे आप किसे ना बूछे पूछे बक्से आप तू पुर सागर मानक हीर तू निर्मल सचगुणी गहीर।

आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरै हंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजै बिन सह पत खोए गुरमुख होवे बूझै सोए महंगो मोल पारिया फार अटल छल गुरमती धार पाए मिलै पावे पैकार नानक नीच कहे विचार आसा महला पहला एक मरे पंचे मिलर होवे हमें जाए शब्द मल धोवे समझ सूझ सहज कर होवे बिन पूजे सगली पत खोवे कौन मरे कौन रोवे ओही करण कारण सब सह सिर तो ही रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए सो रोवे जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवन मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हम बलिहारी सदगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर जोत बिन नामे सूतक जगशोत दुर्मत बिन सै क्या कह रोत जन मुवे बिन पग सरोत मुवे कहो सच रोवे मीत त्रैगुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सोचीत तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहुसंख असंख बिन भय भगति जन बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे पी आप आपो पाए थापो थाप सृष्टि उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिल नहीं प्रात सूतक अगन पखे जा खाए सूतक जल थल सभी खाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुर प्रसादी हर रस पी जय राग आसा महला पहला आप विचारे सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपुरा गुर माने मनते मन तीरा ऐसा सहो सराफी करे साची नजर एक लिवतर रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साजरता पैकार सिफत सहज कर गुर करतार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कह कहाए गुरते वाट महल कर पाए कंचन काया ज्योता नूप त्रिपवन देवा सगर स्वरूप मैं सोतन पल्ले साचा खूट पंच तीन नवचार समावे तारण गगन कल तार रहावे बाहर जा तो उल्ट परावे मूर्ख होए न आखी सूजे जेवा रस नहीं कया बूजे बेका माता जस लूजे उत्तम संगति उत्तम होवे गुण कौता वै अवगुण धोवे बिन गुर सेवे सहज ना होवे हीरा नाम जिवे हर लाल मन मोती है तिसका माल नानक परख है नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख मैली मैल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भक्ति विचारी गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ अह निस निर्मल थान सुथान तीन पवन ने केवल ज्ञान साचे गुरते हुक्म पछान साचा हरख नाही ते सोग अमृत ज्ञान मारस भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बिछोड़े सोई आपे करता करे सोई टाहे ओ सारे हुक्म समावे हुक्मे वरते जोत इस पावे गुर बिन पूरा कोई ना पावे बालक बिरद ना सुरत प्राण पर जोगन बूढ़े अभमान बिन नामे क्या लैस निदान जिसका अंतन सहज न जाना परम पुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे सेवड़ भागे नानक गुर की चरणी लागे आसा

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाणे। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता मेरा प्रभ लाए ता को लागे। हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। केले वेख दो काटे हर नाम परगास कर बीचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मलो अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेले। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिपवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपतापै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै। दर कर महली हर पत राखै एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथा किए। गुरमुख राग स्वाद अंत आगे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे। अन हद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निसो हर जस गुर प्रसाद घट घट सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो। आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा। जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला। गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता। तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै। देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही। जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान छूटै गुरमुख हर गुर ज्ञान। ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग। आसा महला पहला एक तुगी गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटै सत शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार।
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पुत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, हों मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सबदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंधना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़, महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शुहारे खांदियां, मान से जड़िया, तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया, तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए, अगों दे जे चेती है, ता कायत मिले सजाए, साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते ओ, हुण कहन ना मिले खुदाए, एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछे सुख, एक ना एहो लिखिया बैबै रोवै दुख। जो तिस पावै सोथी है, नानक क्या मानुख, आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सैनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, ए कड़ी मैं थापो थापे, जरवण देवे पाई रहाओ। कहां सो करदार मंड मेला, कहां सो बंकसराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी विगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाजो होवै नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया, मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी, आपे करे कराए करता, किसनों आख सुनाई है, दुख सुख तेरे पाना होवे, किसते जाय रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा काफी महला पहला, कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ, नीत नीत कर बांधी है।

पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगदरड़ाए। मानमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूटसी मर नरक समाए। जन्म मरे प्रमाई है हर नाम ना लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए। नानक सिर दे छुटिया दरगै पत पाए, आसा महला पहला। रूड़ो ठाकर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाइये पद निर्बाणी। मैं ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, भाणे मन पाई है मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। भाणे पत पाई है साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तै रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवंदियां लाह मिले गुरकार कमावे, पूर्व होवे लिखिया ता सतगुर पावे। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुख अंध ना चेताई क्यों दर्शन पाए। ता जग आया जानिए लाच साचै लिव लावे, ता जग आया जानिए साचै लिव लाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए। अहनिस रहै निराल मोह कार तुर की करनी, नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी। आसा महला पहला केता अखने आखिए, ताके अंत ना जाना। मैं नितरिया तर एक तू मैं तान सताना। नानक की अरदास है सच नाम सुहेला, आप गया सोजी पई गुर शब्दी मेला। रहाओ हाँ मैं गर्व गवाई है पाई है विचार, साहब से मन मान्या दे साचा धार। अहनिस नाम संतोखिया सेवा सच साई, ताँ कहो बिघन ना ला गई। चल हुक्मर जाई हुक्मर जाई, जो चले सो पवे खजाने। खोटे ठवर ना पाए नी रले जूठा न। नित नित खरा संभालिया सच सबदा पाईए, खोटे नजर नयाब नी ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्मा सोई, एको अमृत बिरख है फले अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रहया गाई, तिन्ना परम ना भेद है हरसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, अवगुण यारे कौ गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा महला पहला मन रातो हरनाए, सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जत भाणिया। जो लग जियो प्राण सच त्याई है, लाह हर गुण गाए मिले सुख पाई है। रहाओ सच्ची तेरी कार देह दयाल तू, हौं जीवा तुद सा लाहे मैं टेक्या धार तू। दर सेवक दरवान दर तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही। दरगै ना महदूर गुरमुख जानसी, वेला सच प्रवान शब्द पछाण सी। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। सच्चे सच्चा

कहो नानको सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा संता की जत एको अंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख बिसरै प्यारे सो क्यों तजना जाए। एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे अंत ना काहू जाए हर जिन्नी चाख्या प्यारे तृप्त रहे गाए। अंचल गहया साधका नानक पैव सागर पार पराए जन्म मरण दुख कटिया प्यारे जा पेटे हर राय सुंदर सुगड़ सुजान प्रा मेरा जीवन दर्श दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कहन न जाए साची प्रीत ना टुटई प्यारे जो जुग रही समाए। जो तुत पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सही सुभाए साबे तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए।

क्या की जय, हर करता सब किश जानदा, सिर रोग हाथ दी जय, जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजै, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सूढ़ सियाने राम राजे, जे बारह पुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाणे, हर संतानो होर थाओ नाही, हर मान निमाणे, जन नानक नाम दी बाण है, हर तान सताने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तूर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवै पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे हुर खाए कन्हेरी, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगे गुरसिखा मन मिठा, हर दर गए गुरसिख पै नाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा, आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै, जो हर नाम ते आवै, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेण न आवै, जन नानक हर कृपा कर, नित जपै हर नाम तरावै, जिनी गुरमुख नाम ते आया, तिन्ना फिर बिघन न होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा सेवया, तिन्ना सुख सद होई, जिन्ना नानक सतगुर पेटिया, तिन्ना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लए छडाया, आसा महला चौथा, शंत कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन परदेसी वे प्यारे, आओ करे हर गुरु मिला वो मेरे प्यारे, कर वसै हरे रंग रलिया माणो मेरे प्यारे, हर कृपा करे गुरु नानक तुठा मेरे प्यारे, मेले हरे मैं प्रेम ना चाखिया मेरे प्यारे, पाओ करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित्यास करे नित जो बन जावै मेरे प्यारे, जमसास हरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हरे उर तारे, पिर रत्याड़े मैंडे लोयन मेरे प्यारे, चातर बूंद जेवै मन शीतल होवा मेरे प्यारे, हर बूंद पीवै तन बिरोज गावै मेरे प्यारे, नींद न पवै केवै हर सज्जन लद्दा मेरे प्यारे, नानक गुरु लेवै चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे, भली रुते पिर बाजड़ो मेरे प्यारे, आंगन तूल लुते मन आसो डीनी मेरे प्यारे, दोए नैन जुते गुरु नानक देख विकसी मेरे प्यारे, जो मात सुते हर किया कथा कहानियां मेरे प्यारे, सतगुरु सुनाइया गुर विटड़िया हों कोली मेरे प्यारे, जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे, मन चिंदेड़ा फल पाया हर तुथड़ा मेरे प्यारे, जन नानक नाम समाया प्यारे, हर बिन प्रेम ना खेल सा, क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा, हर दातड़े मेल गुरु मुख गुरमुख मेल सा, गुर नानक पाया मेरे प्यारे, तुर मस्तक लेख सा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला पंजवा, शंत कर पहला, अनदो अनद घना मैं सुप्रभ डीठा राम, चाखियाड़ा मैं हर रस मीठा राम, हर रस मीठा मन मैं बूठा, सतगुर तूठा सहज पाया, गृह वसाया मंगल गाया, पंच दुष्ट ओए भाग गया।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसैत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरन आयो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंद पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जै देखो तै संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैके नै लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदे नो, चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खेनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे प्राण मंत्र सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछै कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤ ਕੂੜ ਲਵਾਇਆ।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड़ बह करबार, सबको पूरा आपे होवै घटना कोई आखै, पथ प्रवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी स्वजग नानका सच्चा वेखै सोए, सब निशाला मारियां करता करे सोहे, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पथ पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानो तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवाले हो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ, नानक ता का दास है सुई निरंजन देओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे ओ, नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ, महला पहला कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार तां ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगे गया हारी है, पढ़िया अतै ओमिया विचार अगै विचारी है, मोहे चले सो अगै मारी है। सलोक महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे, सत जोग रथ संतोख का धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला साम कह से तंबर स्वामी सच मैं अच्छे साच रह सब

पौड़ी सतगुर विटो वारिया जित मिले खसम समालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरलै किने विचारिया कर किरपा पार उतारिया। सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवै आस कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवै पत मिठत निवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवै आप कहो पर कहो निवै ना कोए धर तारा जू तोलिए निवै सो बुरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा हे सीस निवाया क्या थी है जा हृदय सुदे जाहे। महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ विपुखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोक निश्चो करमं कहो नानक नह चौ त्यावै विण सतगुर वाट ना पावै पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम दे राहे पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना करे औगण पछोतावना। सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ गुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया। महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाहो कती है बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला नाए मन्ने पा तू पजै साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्तै वड़ तागे अवरा कत्तै लै पाड़ करे वी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडाण मन अंधा ना सुजान। पौड़ी साहेब होए दयाल किरपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे परवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी। सलोक महला पहला गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरन ना जाई धोती टिका तै जप माली धन मलेशा खाई अंतर पूजा पड़ै कतेबा संयम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लै जाए तरंदा। महला पहला मानस खाने करै निवाज छुरी वगाए नो तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवै ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करै आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ छुरी जगत कसाई
नील वस्त्र पहर होवै प्रवान, मलेश तान ले पूजै पुराण, अपाखिया का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसै ना जाना, देके चौका कड्डी कार, उपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै, एहो आना साडा फिटै, तन फिटै फेड़ करेन, मन जूठै चुली भरेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवै तां सच पाई है, पौड़ी चित्तै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड़े आईयां आपे ही कर्म कराएंदा।

को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाण कूड़ो होवै नानक सिफत विगास।

ना करे कम आ ना सके रास, जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे पाए, हुरमत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए। खसमे करे बराबरी, फिर गैरते अंदर पाए, वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए। जिसदा दिता खावना तिस कही ऐसा वास, नानक हुक्म न चलई नाल खसम चल अरदास। श्लोक महला दूजा।

नानक सेवक कांडिया जे सेती खसम समाए पौड़ी नानके अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

मुख बाती तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई। रे बौरे तुहे करी ना रखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कहाँ की मात पिता कहो का को, कवन पुरख की जोई। घट फूटे को बात ना पूछे, काडो काडो होई। देहोरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई। लठ छटकाए त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई। कहत कबीर।

आओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। हर का बिलोवना मन का बिचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत तारा। कहो कबीर नजर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सूकी तेल लिखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक से धुआं, रव रहया एक यवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगारे अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पद दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हूं बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करताया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देहे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जीवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन कौ पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। भूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करै किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कछ तप ना कियो। तीस बरस कछ देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करै। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरै। चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीरे आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करै। हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुऐ लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो।

बजाम नहारो कहां गयो, जने हो मंदर कीना, साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिगल पय संग तेरे, इंद्री का बल थाका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो नानक सहबाता। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते, थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे। आसा एक तुके चार, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिष्णु महादेव शलिया। मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रिभुवन डसियले, गुरप्रसाद डीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई, जिन साच पछानिया, तिन सरपनी खाई।

ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पायो, अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए, कोट ते तीसियो जाना, कह कबीर मोए ब्याई चले है, पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी, ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे, ओ किन बिद रहन रहो रे, से जय रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती, तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत, तने नित ताना, कंठ जने उत मारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसन नारायण, हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे, तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्जै, पस ना देखै आग, काल फासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाओ, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे कौ चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्म्या लेख रहाओ। साज कते बखाने अल्लाहो, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाहो गैब सगल कट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

आराम बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ। तन पर एकै संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। तन सुहागन जो पी भावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै। आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरा हीरा बेद पवन मन, सहजे रहा समाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी। रहाओ कहे कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी, साहुर पे बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी। रहाओ कहो कबीर जब लहरी आई, बड़ी का सुहाग टरयो। लहरी संग पहिया मेरा, जेठी और तरयो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले रखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडिया न मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमऊआ लावा। रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडिया न मेरी जात गवाई। आसा रहो रहो री बहुरिया, कुंगट जिन काडे, अंत की बार लहेगी ना याडे। रहाओ कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तोहे जन लागे। कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूदे अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। रहाओ जौ तन चीरा अंग ना मोरो, पिंड पर तो प्रीत ना तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न हुई। आसा कोरी को कहूं मर्म न जाना, सब जग आनत ना होता ना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे होता ना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिशाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोकपतीने कछु ना होवे, ना ही राम याना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। रहाओ जल कै मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्बे, ता सगली सैन तराई।

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र बिमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो।

आसा सेख फरी जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गार अपार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुमा पैर मुंह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरी दै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़ियां मनोम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आईए झूठी दुनिया लग ना आप वजाइए बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दियां शे मां तुड़न दियां हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रलै कट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ते आईए बिन नावै पूज ना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जिये मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवै सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रहे गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जा की भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिंस निर्मल मन मुख रहने आधार सिद्ध समाध करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रह जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀਉ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ। ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यो बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारै काम हम हर लाए, सो हम करै जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता कर इसका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सतबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करे खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरे हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। अठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। धावत धावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनान हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुलहा हर तन बेड़ी। हर हर तार पुराना, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नमृत पाई। हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै। हलत पलत कै संगे लाद खजाना, गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जां का अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर। सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला। संत

केते उदर भरन कह ताई, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जाई, ऐ जी काल सदा श्री उपर ठांडे, जन्म जन्म वहराई। सच है शब्द रते से बाचे, सतगुर बूझ बुझाई, गुर शरण आई जोहे ना साकै, दूत न सकै संताई, अवगत नाथ।

आप न चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे, इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन न चै सकत निवारे, सेवकर नींद ना होई, सकती कर जगत सूता, ना चै टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई, सुर नाल विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी, खंड ब्रह्मांडो त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुमारी, जी जंत सब ही नाचे, नाचे खानी चारी, जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए, से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए, एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागै, बिन सेवा भगत ना होई, जीवत मरै तां शब्द विचारे, तां सच पावै कोई, माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन कौ कृपा तुम्हारी, एकदम साचा विसरै, सा वेला बिरथा जाए, साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए, सही नाचै जो तुद पावै, जे गुरमुख शब्द विचारी, कहो नानक से सहे सुख पावै, जिन कहो नजर तुम्हारी, गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन जियरा रह ना सकै, जो बालक खीरिया धारी, आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी, मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है, जिन कहो कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मन सेवै, अंदर जपत रह बनवारी, शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी, अलख निरंजन एको वरतै, एका ज्योत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी, भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुलतारी, मनमुख दुबदा दुरमत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी, निंदक निंदा कर मल धोवे, ओह मल पख माया तारी, संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी, एहो परपंच खेल किया, सब करता है हर करता है, सब गल तारी, हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एक अंकारी, रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस धारी, नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी, गुजरी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राजन मैं तू राजा कहिए, भूमन मैं भूमा, ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते, पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिए, दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिए, रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिए, भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती, जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिए, आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू

बन महिया अजहो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बहई है, कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखी अलो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुअलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरे थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

काहे भया सन्यासी भरमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं कीन्या परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्बाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख पाग सपागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभु।

पित गली, हर के संत बतावो मार्गो, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर, एह चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली, नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरो दीवानी आवल बावलो, तिस कारण हर ढोली है, कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कतहूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजिया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधियो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावै बिन सतसंगत किसे आगे जाई रुआई है। करै अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया। पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ

तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाऊं साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह

मिलियो मनोहर सर्व सुख है ना त्याग न कत हूं जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे प्रे रोम ना सम सर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार है अनहद रुण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचे प्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछ रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्ट सो गाच साध संगत की सरणी परिय चरण रेन मन बंश। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छ आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराच। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सब हूं मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो। दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुत जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाय बिखे बंतरिया कुले समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीशर पुने पुने बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ। कथन सुनावन गीतनी के गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत। एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले। प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवा कर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा आना।

जाऊं कार्य तराई, बिस्मन बिस्मे कहन कह आहत, गण गंधर्व सिद्ध अर साधक, सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक, चतुर्वेद उचर्द दिन रात, अगम अगम ठाकरे आगाद, गुण बेअंत बेअंत पन नानक, कहन ना जाई परै परात, देव गंधारी महला पंजवा, त्याय गाए करने हार, पौ नाही सुख सहज आनंदा, अनक उही रे एक समार रहाओ, सफल मूर्त गुर मेरे माथे, जत कत पेखो तत साथे, चरण कमल मेरे प्राण आधार, समर्थ्या था बड़ा प्रम मेरा, कड़कड़ अंतर साहेब नेरा, ताकी सरन आसर प्रभ नानक, जाका अंतना पारा वार, देव गंधारी महला पंजवा, उल्टी रे माने उल्टी रे, सागर से कर उल्टी रे, झूठ की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे, साकत संग ना छुटकी रे रहाओ, ज्यों काजर पर मंदर राखेओ, जो पैसा कालू खीरे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिगुटी रे, मांगो दान किरपाल किरपा निद, मेरा मुख साकत संग ना जुटसी रे, जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पग्गा हेठ रुसी रे, राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब दिन के समर्थ पंथ बिठले, हों बल बल जाओ, गावन पावन संतन तोरे, चरण उमा कह पाओ, रहाओ जासन बासन सहज केल करना मैं, एक अनंत अनुपैठाओ, रिद सिद्ध निद करतल, जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ, दया मया कृपा नानक कहो, सुन सुन जस जीवाओ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग देव गंधारी महला नावा, यह मन नैक ना कहो करै, सीख सिखाए रहे हो अपनी सी, दुर्मत ते ना टर रहाओ, मद माया कै पयो बावरो, हर जस नह उचरे, कर पर पंच जगत को डहक अपनो उदर भरे, सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान तरे, कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै, देव गंधारी महला नावा, सब किश जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, आरफुन गृह की नार रहाओ, तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार, आदि करी को न रख, करते देत निकार, मृग तृष्णा ज्यो जग रचना, यह देखो हृदय विचार, कहो नानक भज राम नाम नित, जाते हो ते उधार, देव गंधारी महला नावा, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सबला।

तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा मन तनु रव रहया प्र परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद पतो धारणो प्रभ कृपा धारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवां हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टै जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहा पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावै संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वट भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कले साधु हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बन त्रैण त्रिपावन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्राण आधारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रमिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिय देह नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पे खे जीजिय समर्थ पूर्ण।

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमै सरोवर पियो अमै सरोवरो पियो, हर हर नामा राम संतै संग मिले, जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरै, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना, फिर कदो से दे आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूप करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया। गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तप तो थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए, भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलिया बहुत कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम, लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दोख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने, कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम, अगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना, त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक सरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी, जा ते विछड़िया तिन आ मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम, गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण में प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले, छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया, बिहागड़ा महला पंजवा संत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया, माया व्यवहारी राम संग तेरा कश ना चल बिना गोविंद नामा, देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा, पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी, राजन क्यों सोया तू नींद परे, जागत कत नाही राम, माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम, सर पर विछड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है, हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने, तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले, रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला तीजा, गुरसेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल, गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल, नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल, महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए, सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए, नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए, पौड़ी सब तेरी तू

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानण तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक सरण करतार की करता रखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदो क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करै सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्द उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदर रह सदा गुण गाए, विण कर मैं किने ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भीजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरत आप निर्विरति, आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किने ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगह होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर भंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिया, हमे ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सतगुरु है, कलयुग बोध होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जय, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे कल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाने, आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आने, एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जाने। श्लोक मर्दाना पहला। कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोह।

गुआ जाए, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथे कमावे सो मिले, अगे पाए जाए महला तीजा। तोर खसमै का हुकुम पया, विन सतगुर चेत्या न जाए। सतगुर मिलया अंतर रव रहया, सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पहो गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। आपे दाना बीनिया, आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा, आपे लाए ध्याना। आपे मोनी वरतदा, आपे कथे ज्ञाना। कौड़ा किसे न लगई, सब ना ही पहना। उस्तत बरना सकी सत कुरबाना, सलोक महला पहला। कली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा ती जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुटी जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे, तुम कहां तरन हार पौड़ी। सब केहो तेरे वस है, तुम सच्चा साहो। भगत रते रंग एक कै, पूरा वे साहो। अमृत भोजन नाम हर, राज राज जन खाहो। सब पदार्थ पाईयन सिमरन सच लाहो। संत प्यारे पार ब्रह्म, नानक हर अगमागा हो। श्लोक महला तीजा। सब किश हुक्मे आमदा, सब किश हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपो जाने, अंधा अंध कमाए। नानक हुक्म को गुरमुख बुझै, जिसनों कृपा करे रजाए। महला तीजा सो जोगी जुग सो पाए, जिसनों गुरमुख नाम प्राप्त होए। तिस जोगी की नगरी सब को वस है, पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा विरला को जोगी, जिस कट प्रगट होए।

जाए रहाओ। हमें सब शरीर है, हमें उपत होए, हमें वड्डा गुबार है, हमें विच बुझ न सके कोए, हमें विच भगत ना हो वही, हुक्म ना बुझिया जाए, हमें विच जियो बंद है, ना वसै मन आए। नानक सतगुर मिले हमें गई, ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक, एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर, मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण

नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ांस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी। हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयाणी, जो पिर पावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी। रहाओ मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चेतना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण। नित सुहागण सदा।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतरजामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

है तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ तुझे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना नाम तेरा मंत्र आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ांस।

सच कमाई है, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है, लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कहिए, सुरत शब्द लिखाई है, काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आखिया आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब

ऐसो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन्ना मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब उपाई अन आप आपे नदर करे वडहंस महला पहला करहो दया तेरा नाम वखाणा सब उपाई है आप आपे सरबे समाणा सरबे समाणा आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाणा गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम ना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावै राज तेरा कबो ना जावै राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जोए सह समावै दुश्मन ता दुख ना लगै मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे जपै ता सा

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बजावे दुख भूख संसार किए सा सह चुकावे। बिनवंत नानक जाय सहसा, बुझे गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सों रलिया माणै सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाणै कामण वड भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावै सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रली आला जुबन बाला अंदन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए वढांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिय लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजय हर रा विजय अंधन नाम वखाणै गुण संग्रह अवगुण विकणै आपै आप पछाणै गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझै गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सुवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन निज कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी साचे शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वढ्याई राम गुरमती हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचै शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुती मनमुख जोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आय अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवने अपना अंतर सबद्या पारा अंतर सबद्या पारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखवन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करतै हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक बखाने नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम ले हां रोवे बिरहा तन का अपना साहेब समाले हां साहेब समाल है पंथ निहाल है असा पे उठे जाना जिसका किया तिन ही लिया हुआ तसे का पाना जो तिन कर पाया सो आगे आया असी के हुक्म करे हा आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम ले हां मरण ना मंदा लोका आखिए जे मर जाना ऐसा कोए सेवो साहेब समर्थ अपना पंथ सुहेला आ गए होए पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आ गए मिले वडाई भेटे सिं जावो।

ज्ञान में होनी मुठी, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रोवै औगुणे आरी झूठी। पिर जग जीवन किसनो रोई है, रोवै कंत विसारे, सब जग आपो पायो नो आमन जान संसारे। सो पिर सच्चा सद ही साचा है, ना यो मरे ना जाए, भूली फिरे तन इयाणिया, रंड बैठी दूजे पाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आव कटे तन शीजे। जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजे, जमकाल ना सूजे, माया जग लूजे, लब लोभ चित लाए। सो पर साचा सद ही साचा, ना एहो मरे ना जाए। एक रोवै पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले, पिर अंतर संभाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। एहो तन रुलै रुलाया, काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे। नानक सातन मिले मिलाई, पिर अंतर सदा संभाले, एक रोवै पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले। वडहंस महला तीजा। रोवै पिरे विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जानिया, सतगुर सेवै नाम संभाले। सदा नाम संभाले सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, सबदे काल मार साची वरतार, फिर आवन जान ना होया। सच्चा साहेब सच्ची नाई, वेखै नजर निहाले, रोवै पिरो विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले। प्रभ मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, के मिला प्रीतम प्यारे, सतगुर मिली ता सहज मिली, पिर राखिया उरतारे, सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे, सतगुर ते पिर दिसै। माया मोह का कच्चा चोला, तिद पैदै पग खिसै, पिर रंग नहीं पिर रंग राता, सो सच्चा चोला तित पैदै तिखा निवारे। पर मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, क्यों मिला प्रीतम प्यारे। मैं प्रभ सच पछाणिया, होर भूली अवगण यारे, मैं सदा रावे पिर अपना, सचड़ै शब्द।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत्यो पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कहो बा प्यारा, भाई कहो अत भाई। हुक्म भया बाहर घर छोड़िया, आखिर मैं पई पराई। नामदान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बुझाई रहा, हो जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदया। जन स्यों वाद रिचाई, माया मगन अहनस मग जो है। नाम ना लेवै मरै बिख खाई, गंदन वैन रता हितकारी। शब्द सुरत ना आई, रंग ना राता रस नहीं बेदया। मनमुख पत गवाई, साध सवा मैं सहज ना चाखिया। जेबा रस नहीं राई, मन तन तन अपना कर जानिया। दर की खबर ना पाई, अखी मीट चलिया अंधियारा। घर दर दिसै ना पाई, जमदर बाधा ठौर ना पावै। अपना किया कमाई, नदर करे ता अखी वेखा। कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही। अमृत हृदय वसाई, निरपौ निरंकार निरवैर। पूर्ण जो समाई, नानक गुरविन परम ना भागै। सच नाम वडियाई, सोरठ महला पहला। दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा। सगल पवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल पर पुर लीना। आपे सर्ब समाणा रहाओ, जह जह देखा तै जो तुम्हारी। तेरा रूप कनेहा, एकत रूप फिर प्रसन्ना। कोई न किसी जेहा, अंडज जेरज उत्पुज सेतज। तेरे कीते जनता, एक पुरु मैं तेरा देखिया। तू सबना माहे रवंता, तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किश दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहेबा। डुबदा पत्थर लीजै, सोरठ महला पहला। हाँ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। अमृत चाख परम रसराते, ठाकर शरण तुम्हारी। करता तू मैं मान निमाने, मान महत नाम तन पल्ल। साचा शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम ऊरे ओछे। तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते। अहनस प्रभाते, हर रसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे। अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। अवर ना दिसे किसा लाही, तिसे शरीक ना कोई। प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। सोरठ महला पहला, अलाख्या पारिया गाम्या गोचर। ना तिसकाल ना करमा, जातया जाता जोनी संपो। ना तिस पाओ ना परमा, साचे सचियार विटो कुर्बान। ना तिस रूप वर नहीं रेखिया, साचा शब्द निशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुध बंधप, ना तिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर अपंप्र, सगली जो तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योत सबाई। बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाई। जंतो पाए काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई। सतगुर से पदार्थ पावै, छूटै शब्द कमाई। सोचे पांडै ऐसा समावै, विरला सूचे चारी। तंतै को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। सोरठ महला पहला, ज्यो मीना बिन पानी है, त्यों सागत मरै प्यास। त्यों हर बिन मरिया रे मना, जो बिरथा जावे सास। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एहो रस क्यों लहो। गुर मिलै हर दे रहाओ, संत जना मिल संगति। गुरमुख तीर्थ होए, आठ साठ तीर्थ मजना। गुरदर्श प्राप्त होए, ज्यों जोगी जत बाहरा। तप नाही सत संतोख,
त्यो नामै बिन देहुरी जम मारै अंतर दोख सागत प्रेम न पाईऐ हर पाईऐ सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिलै कहो नानक सिफत समाए सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगा किश थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो घट घट रव रया बनवारी जल थल महियल गुप्तो वरतै गुरसबदी देख निहारी जियो रहाओ मर्त पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्मा जोनी है पी होनी घट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को एहो जग बपड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिलै ता गुरमत पाई है सागत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ ना गर्व मजारी जियो नानक ज्ञान रतन प्रगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोडो वेस पेख चतराई दुबदा एहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै कारे अमृत कट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को धावो कर अवगुण पछताही जियो सर अवसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नामो काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुर बचनी फल पाही जियो ज्यो पावै त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोरठ महला पहला पंच पदे अपना घर मुस्त राख ना सके की पर कर जोहन लागा घर दर राखै जे रस चाखै जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कवन मत लागा नाम विसार अनरस लोबाने फिर पछताहे अभागा रहाओ आवत कहो हरख जात कहो रोवै एहो दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग भोगावै गुरमुख सो अनुरागा हर रस उपरे अवर क्या कही है जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहत जिन एहो रस खोया जां साकत दुरमत लागा मन का जियो पवन पत देही देही मैं देव समागा जे तू देहे ता हर रस गाई मन तृप्त हर लिव लागा साध संगत मैं हर रस पाईऐ गुर मिलै जम पौ भागा नानक राम नाम जप गुरमुख हर पाए मस्तक भागा सोरठ महला पहला सर्ब जियां सर लेख तो राहू बिन लेखै नहीं कोई जियो आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जपो सुख होई अहनिस गुर कै बचन सरेवो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो कर अपने गुर मिलिया हिम्मत होई जियो देख दृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो अपियो परम सुख पाईऐ निज कर वासा होई जियो जन्म मरण पव पंजन गाईऐ पुनरप जन्म न होई जियो तत् निरंजन जोत सबाई सोहंग पेद न कोई जियो अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो सोरठ महला पहला कर दीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद जात पावा तद ही गावा ता गावे का फल पावा गावे का फल होई जाए आपे देवै सोई
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗੀ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਕਉ ਜੀਆਰਾ ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤਾਂ ਜਮਕਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿ ਕਰ ਆਇਆ। ਪੰਡਤ ਨਾਨਕ ਬੂਜੈ।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर कट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्द गुबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसिया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा गुरमुख भगत करै प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करै आप राखै जो तेरे मन पाणे तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझे विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्ष नखै बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाने मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हौ लागा तिन कह पाए सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाने विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटा खावै बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी के

बिन गुर प्रीत ना उपजै भाई, मनमुख दूजै पाए तोह कुटै, मनमुख कर्म करै भाई पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै भाई, गुर कै हित अपार। आया सो प्रमाण है भाई, जे गुर सेवा चित लाए, नानक नाम हर पाई भाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया भाई, गुरमुख बूझ बुझाए। राम नाम लग छुटिया भाई, पूछो ज्ञानिया जाए। मन रे त्रै गुण छोड़, चौथे चित लाए, हर जियो तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै भाई, नाए विसरिया मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे भाई, पवजल पार उतार, जग में लाहा हर नाम है भाई, हृदय रखिया उतार। गुर सरनाई उबरे भाई, राम नाम लिवलाए, नानक नाम बेड़ा नाव तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थै सुख नाही। हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया, मरजन मैं रोवै ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर रा साधना आया, संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवड भागी, जिसनो वाह मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों आप गवाए। एहो जग अंदा सब अंध कमावै, बिन गुर मग ना पाए, नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहिस माणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किलबिख काटणु हारा। शब्द मराओ फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हों मैं बंधन कमाए जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हों मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा शब्दे हम मैं खोई। सोरठ महल

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हम मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवां। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिनो अवर ना दाता बिया जो जो शरण परै साधु की। सो पार गरामी किया रहाओ कोट प्राद मिटे जन सेवा। हर कीर्तन रस गाइए इहां सुखिया गै मुख उजल। जन का संगवट भागी पाइए रसना एक अनेक गुण पूर्ण। जन की केतक उपमा कहिए अगमा गोचर सद अविनाशी। शरण संतन की लहिए निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा। नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मगन चरनारा। सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निकोठा कर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एहो मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का तोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कह प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवा जेती।

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद।

सोरठ महला पंजवां मृत कौ पायो तन सासा बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई ता की कीमत कहन न जाई रहाओ दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा मन बाथ।

गया हर गोविंद नमा निरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई सार संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे राखे पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपुरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आनदिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास का कंठ लाए राखे जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचों ने सहसा चुकाया सिकदारो ने पतियाया उमरावो आ गै चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभद अपनी पाई ता कत आवै कत जाई तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपुरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई ता की कीमत कहन ना जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट तमन यो महा सगल प्राहित लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा नानक प्रभ मेरे साथे जन्म मरण पैलाथे सोरठ महला पंजवा गुरपुरे कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इसनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर तिहाइय अन दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडपागी पाए कोट जन्म के किल बिखना से हर चरणी चितलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जन पूरी कल राखी जी जंत सा पै पवित्रा सदगुर की सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पय सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पहे दयाला जप आनंद रहो।

जन जन साध संग पाया सो प्रभ अवतराया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे गुरपूरा है राखी शरण सचे की ताकी परमेसर आप हो रखवाला सात सहज सुखन मैं उपजे मन हो

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइय साध संग मिल त्याई मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभु अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर देश सिधायो हुन नहीं संदेशरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो।

जैसा बाल को पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब जाने ता किस पे आग सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रहो आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवे, मेरे पूरे सदगुर भावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संतां देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जो तुद पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा। गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहुड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस न जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पा दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावे, आठ पहरो हर का जस रमणा, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरे करते, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिके बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्स अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवां, भूखे खावत लाज न आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गए मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद कर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय उर तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवां,
ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸਚਾ।

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे तहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

आओ बैठो आदर सब थाई ऊ नकत हूं बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर

करई कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई कल मैं एक नाम कृपा निध जहें जपै गत पावै और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिख्यन कौ तावत केह बिदरो कौ ताहे रहाओ वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै पर धन पर धारा सिउ रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी सोरठ महला नावा हरे नर एह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगते अपने सुख लागयो दुख में संग ना होई रहाओ दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे

कहो नानक हर बिरद पछानो भूले सदा परानी। सोरठ महला नावां जो नर दुख मैं दुख नहीं माने सुख स्नेहो अर

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर सिओ बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुडे तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुडे पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हरनाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वड्याई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़ै जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हौ मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का इस्वार नहारा। ओना की रीस करे सो विगुच्चै, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे।

माया लाल च अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना कीजई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिलै प्यारे दरगै मिलै सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुरु जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम संभाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेये पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मनो कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोर

हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, परम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है। हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास। जिनी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोहकाला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास। नानक गुरमुखा नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए। दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे बेकार, मनमुख आप सवारथी कारज ना सके सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप से

हर हर नाम बोलो दिन राती, सब के लिए विखो काटै पलका। हर हर दयाल होवे जिस उपर, सो गुरमुख हर जप जिनका। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो। खनली तोती उजली ना हो वही, जैसो तोवण पाहो। गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी होवे मत बदला हो। नानक मैल न लग गई, ना फिर जो नी पाहो। महला तीजा। चहो जुगी कल काली कांडी, एक उत्तम पदवी है जुग माहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाई है, जिनको हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी अंदन भगत हर उचरै, हर भगती माए समाहे। पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत, मुख बोली हर हर भली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमति हर रंग सदा माण। हर जब जब औखद खाद्या, सब रोग वाते दुखा कहाण। जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हरिया राध ते, तन चुकी जमकी जगत काण। श्लोक महला तीजा। अरे जने उथारे दबे, सुत्या गई मुहाए। सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो, अंतर ना उपजो चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए। जगत जलंदा डिठ मैं, हम मैं दूजे पाए। नानक गुर शरण आई उबरे, सच मन सब त्याए। महला तीजा। शब्द रते हम मैं गई, सोभावंती नार। पिरकै पाने सदा चलै, ता बनिया सिंगार। से सुहावी सदा पिरदावै, हर वर पाया नार। ना हर मरै, ना कदे दुख लागै, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रमे लई, गुर कै हित प्यार। पौड़ी। जिन्ना गुर गोप्या अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन, ना करो पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरे कसुद मन, जो धरखट नारी। वडभागी संगत मिलै गुरमुख सवारी। हर मेलो सतगुर दया कर, गुर कौ बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुखी उपजै, फिर दुख न लगै आए। जमन मरना मिट गया, कालै का किश ना बसाए। हर सेती मन रव रहया, सचे रहा समाए। नानक हां बलिहारी तिन कहो, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। बिन शब्द शुद्ध ना हो वई, जे अनेक करे सिंगार। पिर की सार न जानई, दूजे पाए प्यार। साक सुध साक उलखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी। हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जपदे हर हर दिन सरात, तिन हउ कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। हउ वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। श्लोक महला चौथा। हर दासन स्यो प्रीत है, हर दासन को मित। हर दासन कै वस है, ज्यो जंती कै वस जंत। हर के दास हर त्याय दे, कर प्रीतम स्यो ने हो। कृपा कर कै सुनो प्रभु, सब जग में वरसै में हो। जो हर दासन की उसत है, साहर की वड्याई। हर अपनी वड्याई भाम दी, जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम ते आएंदा, हर हर जन एक समान। जन नानक हर का दास है, हर पैज रखो भगवान। महला चौथा। नानक पीतलाई तन साचै, तिसमें रहन न जाई। सतगुर मिलै ता पूरा पाई है, हर रस रसन रसाई। पौड़ी। और

वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरे ना एक काजा भजियो ना रघुपत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा,

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवाया केला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुद बिलोबन कौ माटा, ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटे गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत सचेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई तितलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहा ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, किस जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाउ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछले नामा, का पहचान शवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उस माई, हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जो को शान शवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतु था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाज।

हम बाती जाओ तुम तीर्थ तौ हम जाती साची प्रीत हम तुमस्यों जोरी तुमस्यों जोरे अवर संग तोरी जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकरे और ना देवा तुमरे भजन कटे जम फासा भगत हेत गावे रविदासा जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कंद उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा बंके बाल पाग सिर डेरी एहो तन होए गो।

वैद बनवारी अपने संतै लिहो बारी रहाओ। माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई वा का औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई। रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई। कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जै देखा तै सोई। तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेवया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नमा सदा सदा दातार रहाओ। अंदन साहेब सेविए अंत छाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा सदकुरबान जाओ, रहाओ सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए। ता की सेवा सो करे जा को नदर करे, तुदवाज प्यारे केव रहा। सा वड़ियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए जिसे आग्या प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहब अपना अवर न जाचा कोए, नानक तांका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। साहेब तेरे ना विटाओ बिंद बिंद चुख चुख होए, रहाओ तनासरी महला पहला। हम आदमी हां एकदमी मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिन मैत सहसरे वो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख के ते के दिना रहाओ, सास मां सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किश पाई है पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चेतना किया कपटी कपट कमाना। जम द्वार जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक के सुनिया किश कही है, भाल रहे हम रहन ना पाया जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तपह आओ जियड़ा बिललाए, सिरज सवारे साचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म ना पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए, लोक पतिने ना पत होए। ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी नाही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनों बख्से साचा सोए। हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रहे लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करै, अंतर की दुबदा अंतर मरै। गुर प्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागै फिर काल ना खाए। रहाओ सच सिमरिया होवै प्रगास, ताते बिख्या मैं रहै उदास।
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਆਗੈ ਧਰੈ, ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਮਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ। ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ।

हर हर अगमय अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख परम पाव भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिले पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह ना सके अंत माती। तू पर परे अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम पाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर
लग संगत साध जना की, दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चरियो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर, तुम आपे आप आपा की। जन नानक कहो प्रभ कृपा की, जय कर दसन दास दसा की। तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दोपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। उर तार विचार मुरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने। अदृष्टा गोचर परम्पर स्वामी, गुरपुर प्रगट कर दीने। राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पहे। हर कंचन चंदन कीने रहाओ, नाम शे खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने। जन नानक हर हृदय सत्याव, इं हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर, एव हर हर नाम ते आई। हर दर गै पावै, फिर जन्म ना आवै, हर हर हर ज्योत समाई। जप मन नाम हरी, होहे सर्व सुखी। हर जस ऊच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छडाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी। तब हर स्यो प्रीत बने आई, बहु चिंत विसारी, हर नाम ओर तारी। नानक हर पय है सखाई, तनासरी महला चौथा। हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर भोजन पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट। एव पण हर नाम मोरारी, मन जपिए हर जगदीश। मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवै दिन राती। हर कीर्त कर बनवारी रहाओ, हर हर करी दृष्ट। तब भयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो, सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को विरला पावै, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम, हर जस उत्तम काम। जो गावै सुने तेरा जस स्वामी, हम तनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हों पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवै। सब गावै हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो। हर कथा जिन जनो जानी रहाओ, आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर। जा कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े। ता सर्व सुख पाव है मेरे मना, जप मानो सतनाम सदा सतनाम। हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनासरी महला चौथा।

तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अवनासी पुरख मुरारे ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बड़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंदो अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिनहर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसाओ रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन ना साको उस तां की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आय चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरे कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिख

पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सिमरत पार पराना शीतल सात मां सुख पाया संत संग रहो ओला हर तन संचन हर नाम भोजन एहो नानक कीनो चोला तन आसरी महला।

प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ता कहो, बिखम ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम, जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेट, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै, अस्त्र करे निचल एहो मनुआ, बहु ना कतहू कावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यो प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनाश्री महा

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जापयो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन ओट गई संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजल तारे। रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा कर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले। रहाओ निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोइथ पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई नाम ने दरिद सिधार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का रवर आश्रम ठाई। रहाओ ता को कोई न पहुंचन हारा, जा कै अंग गुसाई। जम की त्रासन कै जिस सिमरत नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा दर्भवंत, दर्भ देह गर्ब है भूमवंत अभिमानी। राजा जन सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बित तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हारे। रहाओ आन त्याग पै के आसर, सरन सरन कर आए। संता अनुग्रह पै मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनासरी महला पंजवा जा कौ हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस तांकै, जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग, सरनी पावन नाम ते आवन। सह समावन संग रहाओ, जन के चरण वसै मेरे ही अरे। संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध, नानक कै सुख एही। तनासरी महला पंजवा जतन करे मान खुड है कावे, ओह अंतर जामी जाने। पाप करे कर मुकर पावे, पेख करे निर्बन। जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताकै उत ते उत पेख है, आवै लोभी फेर। रहाओ जब लग टुटै नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी हो अपने, जाके मस्त करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में तरमा।
ਜਨ ਕਉ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸੋਭ, ਨਾਮੋ ਗਤ ਨਾਮੋ ਪਤ ਜਨ ਕੀ, ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ, ਸੇਈ ਪੂਰਾ ਸਹਾ, ਨਾਮ ਵਿਵਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹਾ, ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਭੇਖੇ, ਮਾਥੈ ਪਰੋ ਰਵਾਲ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਠਾਕੁਰ ਕੇ, ਮੋਰੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਬੇਅੰਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ, ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਓ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ, ਬਚਨ ਉਪਰਸਾਲ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੈ ਭੋਜਨ, ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਭੋਗ ਰਸ ਦੇਵੈ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੈ, ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ, ਜਿਉਂ ਰਾਖੈ ਮਹਿਤਾਰੀ ਬਾਰਕ ਕਉ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਰਹਾਓ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਦੇਵਾ, ਈਤ ਊਤ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੇਵਾ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ।

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवा औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

संतन का संग पावा, सोग अगन में माना व्याप, आठ पहर गुण गावा, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदयंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुड़ जन्म ना छापण। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानख कहो जाचत शरम पाई है, प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना, वेद पुकारे कोख, कृपा सिंध सेव सच पाई है, दोवै सोहेले लोक। आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पह काटे, मिल साधु बिन से शोक। तनासरी महला पंजवा, तृष्णा बुझे

जय जय देखो तै तै स्वामी कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला होवा जा कांत न पारा वार, नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काढे मार। तनासरी महला पंजवा करनामा पड़ताल, एको अंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो दृष्ट प्रभ धारो, कृपा करता रहो पूजा गै कूप ते काढ लेवो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दोखा तन शाद पूरे, प्रभ बिना आन रख नहारा, नाम सिमरावो सरन सूरे। पत त्यो धारणा जी जंत तारना, बेदो चार नहीं अंत पायो, गुणे सुख सागरा ब्रह्म रतनागरा, भगत वछल नानक गायो। तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख, नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटै कमाणे पाप चिराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै रहाओ। राजोबन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महात कह, आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै। सरण समराथो अकाथ्या गोचरा, पत ते उदारण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा।

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर कह शब्द भरम पौ भागे। सूरत मूर्त आद्या रूप, नानक जाचे साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईए। बिन गुर भेटे मरियाईए जाइए रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिले मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मिलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए।

अन क्यो पाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी करतो सदही विहावै कोई ऐसो रे पेटै संत मेरी लाहै सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावै पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खेना धीरै मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय संचा जे तेरे तीर्थ नाए अहं बुद्ध महल लाए कर को ठाकरो एक तिल ना मानै कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सनानै सगलिया शर्म कीने मनु आनह पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेख जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेख मन अठ जो कमावै तिल ना लेख पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राए काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानण ने साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम त्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो सालाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावै सहज नावै बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़ै सुवाया गत संग मीता संत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी है हौ मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवै बिखला दे शब्द सचै गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रया सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिरसर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मैं साय समाना आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मने अंत सखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार
ਅਲਖ ਸਰਨ ਦਿਆ ਜੀਓ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹ ਵਾਦ ਵਧਾਉਂਦਿਆ ਜੀਓ, ਦੋ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਜਨਮ ਵਾ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੇਲੀ, ਬਿਖਲਾ ਦੀ ਸਿਰ ਭਾਰਾ, ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸੰਜਾਪੈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਜੀਓ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ ਜੀਓ, ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਮ ਤਸਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਣੇ, ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਹੰਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ ਕਿਉਂ ਦਰ ਜਾਏ ਸਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਾ ਜੀਓ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸਾਚ ਵਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ, ਦੀਨਾ ਨਾ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧਰੋ ਫੁਰਮਾਈ, ਆ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਿਰ ਸਿੰਘ ਮੂਠੜੀਏ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈਆ ਜੀਓ, ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆਲਾ ਲੇਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਓ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਸੀ, ਗੁਣੀਆਂ ਚਾਰ

हमरा मन तनो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काले अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। उपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, 12 जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, 10 बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, 70 दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारना जमकारना पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे, दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो करमरी रहाओ, संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कोल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़, तांचे बादवा, कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी, तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफीट सरी, अमृत शशि तेन लक्ष्मी, कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं, कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओ पाड़ी ले रावण बाण, साल बेसाल आन तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी, पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी आले राम चे राम, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति।

रामा भगत रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै, मदन मूर्त पैतार गोबिंदे, सैन पणै पज परमानंदे पीपा।

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपो ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त है, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर सुमंद मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतनयो महाराम, सखी मिलाओ मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम्यो महाराम, आपे वरदाना वरसाहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभाव, गुण नानक नाम्यो महाराम, जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा तार मध सूदन, मिल सत संग यो महाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जपियो महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोलियत पारी, गुरमत जपियो महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख मै

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभ को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ इंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा।

मन बिला स्वादंग रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृमै मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह सो साई जय विसरै नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सै त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग मैं मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना मित्र ना इठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्टि का हर नाम मर पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शमर छत्र चमर तख्त आसन अरे चंत मूड़ अज्ञान अंधै नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंदै ताया पूर्ण पय नाकाम मोहया माया क्या बेचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जगते पृथ्वी नव खंडणै बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमणै कौत कोट तमासया चेतना आव सुनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिर देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिर सैतानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चलते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी चल दया नाल ना चल सो क्यों संजी है तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है हर बिसरिया क्यों त्रबतावै ना मन रंजी है प्रभु छोड़ अन लागै नरक समझी है हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजी है सलोक नच राज सुख मिष्टं नच भोग रस मिष्टं नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कशुना ला गई भगतन कौ मीठा यान सुवा सफी किया कर निर्णव डीठा अज्ञान परम दुकटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादंग अलबंधन कुसुम बसने चरण कमलर चंत संत नानक आना रुचते मुखडे गाऊ पलक छड़ियाना डे उचित जीवन संगम तिस्तनी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यो मछली बिन

नाद कुरंकै बेदया सन मुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सा राधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदोत करण हर रमण संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त है कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारे भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लिहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना सो संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक ते आया निर्मल पय शरीर जंतूरी नाया मंतन पय संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटंब संग लोग कुल सवाया सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुर दयाल समरथ गुर गुर नानक पत तो उदारण है पाओ जल बिखम असगाहो गुर बोथ तारियम नानक पूर करम सतगुर चरनी लगया पौड़ी तन तन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जपे ताय अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना

ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन्नई संतन सेवा कित ही काज ना आया कर आपरन सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख बेख दुख पाया सारो दिन समझूरी करता तो मुसले शराया खेद पयो बेगारी न्याई कर कै काम न आया पयो अनुग्रह जाको प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसुर हरनीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो महापत ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तहारो पावो जो तू देह तही एहो तृप्त या नकत हूं तावो सद ही निगट जानो प्रभ स्वामी सगले रण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कशु मेरा संग न चल मिले कृपा गुणगाम रहाओ राज माला नेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए बहुविध कौतावे सगल निरार्थ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दिस सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधार जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरा परिवार है नाम सिखाई सदा मेरा संग हर नाम मुको निस्तार है बिखे बिलास कहियत बहुत तेरे चलत न कछु संगार इष्ट मीत नाम नानको हर नाम मेरा पंडार है टोडी महला।

चरण पखार करो गुर सेवा, मन चरामो भोग, छोड़ आपत बाद हंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा, अवर ना करन है जोग। टोडी महला पंजवा, सतगुरे आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजै दूजी ठाहर, हार पर्यो तौ द्वारी, लेखा छोड़िया लेखै छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंधु सदा मेहरबाना, सब ना दे आधारी, नानक दास संत पाछै पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निध गायण, सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगै सोई सोई पावै, सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहूं ते छूटै, पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचार्यो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी

खात खर्चत किछ निखुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो। पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक, सब देखै लोक सुबाया। टोडी महला पंजवां, किरपनो तन मन किलवख भरे, साध संग भजन कर स्वामी, ठाकन कौ इक हरे रहाओ। अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम ना जाही करे, जिसका बोहित तिस आराधे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहै, ओए ऊहा ही है तरे, जोर सकत नानक किश नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवां, हर के चरण कमल मन त्याओ, काढ़ कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ रहाओ। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवां, हर हर नाम सदा सद जाप, तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी, वस्ती की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही संभाले, बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जने अपने, हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना, दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन, जा कावड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा, स्वामी शरण परे दरबारे, कोट पराध खंडन के दाते, तुझबिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पाई है, माया रच बंद हारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप, सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवां, कर तीजा चौपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हां हां लपट्यो रे मूड़े, कछु ना थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ, जो पराई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचयो जित भूख तसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परिया, गुर प्रसाद नानको तरिया। टोडी महला पंजवा, हमारा एक हरी हरी, आन अवर सियाण न करी रहाओ। वड़े भाग गुर अपना पायो, गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया, सब किछ तिसके गृह में आया। टोडी महला पंजवां, कर चौथा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नी हो ना होए रहाओ। हां टूडेंदी दर्शन कारण, बीथी बीथी पेखा, गुरमिल परम गवाया है। एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्ना, लेख लिखियो तुर माथै, एह बिद नानक हर नैन अलोए। टोडी महला पंजवा, गर्भ गहलड़ो मूड़ो हियो रे, हियो महराज री मायो, डीहर न्याई मोयफा क्यों रे रहाओ। कणो कणो कणो सद लोड़ै, बिन लहना कैठे पायो रे, महराज रो गाथ बाहू स्यों लुबड़ियो, नेह पागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे, जा को लहनो महराज री गठड़ियो, जन नानक गर्भासना पौड़ियो रे।
ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ ਪੰਚ ਦੁਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਦੀਨ ਰੂਪ ਅਨੁਰੂਪ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਗਇਓ ਮੋਇ ਹਰ ਰੰਗ ਪੀਨ ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਠ ਬੀਚ ਖੋਏ ਅਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰ ਖੇ ਪਤੀਨ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹੋ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਤੀਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਇਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ ਦੇਖਣ ਕਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਨੀਤ ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਗ ਮੋਰੈ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਉ ਮੈਂ ਹਰ ਸਖਾ ਕੀਤ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਮੀਤ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਮਖ ਹੀ ਅਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਰਹਾਓ ਖੋਵੋ ਪਰਮ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਕੋਟ ਰਾਜ ਨਾਮ ਤਨ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੋ ਪ੍ਰਭਮਾਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜਸ ਪੂਰਾ ਗਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜੀਅਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਕੀ ਧੂਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਰਹਾਓ ਦੈ ਜਸਰਵ ਰਹਿਆ ਜਸ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਸੇਜਨ ਕਵੋ ਨ ਮਰਤੇ ਚੂਰ ਤੰਦ ਬੰਦ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਟੇ ਬਿਸੂਰ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਭੋਗ ਇਸ ਜੀ ਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਾਨੇ ਕੂਰ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਇੱਕ ਖਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਉ ਧਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਰਹਾਓ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖਦਾ ਤੇ ਅਵਨਾਸੀ ਬਿਮਲ ਜਾਂ ਕੋ ਜਾਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਹਰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਨ ਰਹਾਓ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਚਤਰ ਸਭੇਤਾ ਰਿਧ ਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸੁਵਾਮੀ ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜਨ ਸੋ ਖਾਵਨ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦਾ ਆਨ ਬੀਓ ਦੂਸਰ ਲਾਵਨ ਰਸਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜਸ ਜੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਜਾਵਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਲ ਰਹਾਓ ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਿਤਰਾਈ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਸਾਧ ਮਗ ਚੱਲ ਸਿਮਰ ਸੁਵਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਕਾ ਇਹੋ ਉਤਮ ਫਲ ਬੇਦ ਬਖਿਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗਹੀਨ ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਖਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਚੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਦਹਿਨ ਭਏ ਮਲ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ ਰਹਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਬਨਾਸੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਸੇ ਮਦ ਢੀਠੇ ਅਸਰ ਪਏ ਸਾਚ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਾਹੁਰ ਨਹੀਂ ਪੀਠੇ
बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बेहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवै दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो वडभागी जां को अंत ना पारा वारा कर गह काढ लियो जन अपना बिकसागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहु ना संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सरू पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम्या पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्ज कनक कामनी के रस नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ जग झूठे कहो साच जान कै ता स्यों रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो नहीं कबहू होत जो संग सहाई मगन रहो माया मैं इस दिन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर काय रे बकबाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाना मूर्ख नाम देवरा मैं जाना कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित पय राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन कौ परत गया आई एकादशी वर्त रह काहे कौ तीर्थ जाई पणत नाम देव सुकृत सुमत पय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन छंदे खेल अच्छ रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छ राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अच्छ रांडी सांडी हांडी गो बाणिए के

दरियाओ तू देहांत तू बिसियार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुश खबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सामले बरना आस पात गज पात नरे नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवै रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो मन संपट जित सत सरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रहै कहिंदे कहै कहे कह जावै तुम सर अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै हौं।

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, बंधन बांधया सब जग पवे। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै, जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। रहाओ कोठे मंडप माड़िया, पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े, तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै, ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला, साध रंग ढोला। रहाओ साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै, जे मिलिया होई, आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया, सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो, सौ खरा प्यारा, हम सह केरियां दासियां, साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडै पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया, चल ऐ सतगुर पाए पवे ना पिखिया। जा को महला हजूर, दूजे नवै किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कले आने आप जिस नाही दूजा मत कोए। ताहे उसारे साज, जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पाव सी, पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी, ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी, मत को जाने जाए अगै पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी, अमृत हर का नाव आप वरताए सी। चलिया पत स्यों जन्म सवार, वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुलतार सी। सुही महला पहला, जोगी होवे जोगवे, भोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीर्थ मल मल नहाए। तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अलाए। रहाओ जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ ना होवई जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कांडिए, जैसी कार कमाए, जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए।
ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਿਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਓ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकाऊ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाण

बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख। जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जानै, सब तुदनो नित त्याए। जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए। सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सबरो गवाए। ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ। ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विच हों मैं कार कमाई। जिन किए तिसे न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई। हों मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख भारी। गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हों बलिहारी। जिन सिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो। नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो। सुही महला चौथा, कीता करना सरबर जाई। किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किशु ना होवै। ज्यों हर भावै त्यों रखी, मेरे हर जियो सब को तेरै वस। असा जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों भावै तिवें बख्स रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कर लाया। जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सिरिठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै। एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मन मुख करै से रोवै। हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूर्ख मुग्ध नी जान। जन नानक कहो हर बख्श लै, मेरे स्वामी शरणागत पया अजान। राग सूही महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकारा। कवन रूप दृष्टियो बिनसायो, कतै गयो ओ काते आयो रहाओ। जल ते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते कंकारा। सहस घटा मैं एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रगास। परम लोभ मोह माया विकार, परम छूटे ते एकंकार। ओह अविनाशी बिन सत नाही।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाई है अंत न लही है मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभ हाथ दे निस्तारे। सुही महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महल ना पावे कहतो पहुता। जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता मने प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझे ना याना माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा सात जना का दर्शन जीठा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनते आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्स करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईऐ जौ होइऐ रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना। रहाओ सुही महला पंजवां कर मैं ठाकुर नदर ना आवै। गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सागत फिरता नीर बरोलै खप खप मरता। रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लून हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवां।

संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा कै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जमदूत बिदारे। जा की तीरक इस मने सुधारे, जा कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बाद सहा सहा वापारी मरना, जो दिसै सो कल खरना। कूड़ै मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। किरपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा, घट घट।

घुड़सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टूट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहि दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला। साध गावे गुण सदा रसाला रहाओ। जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवन हार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत। मिथ्या मोह बंधे नित पारच, माधवे पाज देनो नित रैणी। जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पापत जायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचे संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा। झूठे तंदे रचियो मूड़ा,

दर्शन कौ लोचै सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवै दुत्तर माई। दिन रहन अपना किया पाई, किस दोष ना दीजै कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, घर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानु। तिसका पनिहारा, भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निध पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड। ताहू मैं पाओ, राख लेहो एहो बिखई जियो। देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछै जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा, कर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया, निज मंदिर प्रिया। तहां आनंद करिया, नै मरिया नै जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविद फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया। गही ओट साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा, कर सेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास, बेनंतियां मिलै नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा।

आस चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सीओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहू काची दे आनी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तुही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्द अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा पाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर

ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां, सगल त्याग गुरसरणी।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं।

कंतै पावै ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतराई कर कृपा प्रभ लावो पाई खरी सयानी कंत ना पाणी माया लागी परम पुलाणी हौ मैं जाई ता कंत समाई तौ कामण प्यारे नमनिद पाई अनक जन्म बिछड़त दुख पाया कर गैले हो प्रीतम प्रबराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावै प्यारा तै रावेसी। सूही महला पहला करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंब का थोड़िया दिन चार जियो विनावै परम पुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे सेकी रत्या जन्म न दूजी वार जियो रंगे काक्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो रंगण वाला सेवी है सच्चे सोच तलाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवै बिन भागा।

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चित न आवई, फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबी है, सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना, पुछै कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा, खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवै जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होणिया, गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुच्ची है, बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर त्या, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है, सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना

गर्भ मुसै कर चोर के सुरू आई है, गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जो दी पाई है, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रह निकाम जे गुरमत पाई है, आराध्य है हर नाव मन वसाई है, नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है, सूही महला पहला मनो ना नाम विसार, अहन सत्याई है ज्यो राखै कृपा तार तिवै सुख पाई है, मैं अंदले हर नाम लखटी टोहनी, रहो साहिब की टेक ना मोहै मोहनी, रहाओ जै देखो तै नाल गुर दे खालिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तवैर जाए परम पौ पंजना, जन्मत ही दुख लागै मरना आए कै, जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै, हौ नाही तू होवै तुद ही साजिया, आपे थापो थाप शब्द निवाजिया, देही पसम रुलाए ना जापी कह गया, आपे रया समाए सो विस्माद पया, तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है, मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए, गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे, राग सुही महला तीजा कर पहला, अष्टपदिया एको अंकार सतगुर प्रसाद, ना मैं ही ते सब किश होवा, बिन सतगुर नाम ना जापै, गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापै, कौडी बदलै जन्म गवाया, चीनस नाही आपै, गुरमुख होवै ता एको जाणै, हौ मैं दुख ना संतापै, बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन साचे स्यों लिवलाई, शब्द चीन आत्म पर गासिया, सहजे रिया समाई, रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूजै, गुरमुख शब्द बीचारे, जियो पिंड सब गुरते उपजै, गुरमुख कारज सवारे, मनमुख अंधा अंध कमावै, बेखटे संसारे, माया मोहे सदा दुख पाए, बिन गुरे हथ प्यारे, सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चालै सतगुर पाए, साचा शब्द सिबत है साची, साचा मन वसाए, सच्ची बाणी गुरमुख आखै, हौ मैं विचों जाए, आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए, गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप्त साचा रंग राता, गुर कै सहि सुभाए, मनमुख सद ही कूड़ो बोलै, बिख बीजै बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कमन छड़ाए, सच्चा तीर्थ जित सत सर नावण, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीर्थ गुर सबद दिखाए, तित ना तै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची साला, पूरे गुर ते पाए, तन मन सब किश हर तिसकेरा, द्रुवत कहन ना जाए, हुक्म होवै तां निर्मल होवै, हम मैं विचों जाए, गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा यगन बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजे माता, सहजे रया समाए, हर का नाम सत कर जाने, गुर कै पाए प्यारे, सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चै नाए प्यारे, एको सच्चा समय वरतै, विरला को विचारे, आपे में लय ता बक्से, सच्ची भगत सवारे, सबो सच सच सच वरतै, गुरमुख कोई जाने, जमण मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाणे, नाम ते आए ता सतगुर पाए, जो इच्छा सो

सब किश वसै खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला काया कामण सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई मन मुख मुगद बूझै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा इस काया अंदर नौखंड प्रथमी हाट पटन बाजारा इस काया अंदर नाम नवनिध पाई है गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तोलावै आपे तोलनहारा एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाई है नाही नाम पाई है गुर बिचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा पूरा सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी लोका ना साला है जो मर खाक थी वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारिया दूजा पायर चन तिसना भुख ना उतरै अंधन जलत फेरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा पली किसै की नाही मनुख मुग्द करन मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन ए मन जैसा से

नरक स्वर्ग अवतार माया तंदया। सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत विचारिया, नाम बिना सुख नाहे सर पर हारिया। आवे जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते। जिन कौ भय दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा ते सहे। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला, कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कुचजी अमावन डोसड़े, हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दू एक चिड़ंदियां, कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी, यह जियो। से गुण मंजना यावनी, हो कै जी दोस्त रेव जियो। क्या गुण तेरे विथरा, हो क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल ना अंबड़ा, हो सतगुर बाणा ते रह जाओ जियो। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो, से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर किते रास जियो, हौ एनी टोली पुली अस तिसकंत ना बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो, सातन चली साहोरै क्या मोह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो, तै सह नालो मुती अस दुखा को तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा एक।